इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam, Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। यह है कश्मीर, यह है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहां की शायरी को महसूस करना होगा। यहां की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहां की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहां की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहां की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तख्लीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तख्लीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगढ़ लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गोल To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nashamukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक।

0: अमुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM. 0.4 FM.
4: Nasha Mukt Lola, T20 Cricket Cup 2026. Organized by Sports Club Chandigam Lola in collaboration with Swaland Police Administration District Kupwara. Under the theme Nasha Mukt Bharat, the battle of cricketing giants, 32 teams from North Kashmir with one goal to lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official radio partner, Radio Chinar 90.4 FM.
5: Kashmir, sirf ek jagah ka naam nahi hai, ye ek खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहां की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। ये है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहां की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तकलीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फन पारे नहीं है बल्कि ये कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करते हैं। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तकलीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है,

जी हाँ दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM, और आप सबका वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी वी नेम्ड व्हाट्सएप। दोपहर के भविष्य स्टूडियो आपसे बतियाने के लिए, आपकी सुनने के लिए, अपनी सुनाने के लिए, याद रखिए आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चुनाव के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। हर दिल की धड़कन को धड़काने के लिए फॉलो शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स में प्यार जरूर दें, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाते हैं लाइव दुनिया के किसी भी कोने में, घर हो या गाड़ी, अगाड़ी पिछाड़ी, जहां भी आप जाएंगे हमें आपके पास पाएंगे। www.radiochunnao.com पर लॉगिन करके भी आप लाइव लिसन कर सकते हैं। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सएप, मैं हूं चौकसी, मेरी जान धड़का दे रहा।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर

करार आ जाए, जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए, जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम, सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।
3: ईद यूंगे किंग खान जयो हनी सिंगर

हाय मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद, तो बहुत डर लग रहा है। हे वैष्णो देवी, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी।

0: दीदी
1: हाँ
0: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
1: उससे अप्पा
2: जनरेटर चलाई यार और कमाल करता था।

दोस्तों रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। मैं हूं जॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप स्किल्ड बन सकते हैं। आज के व्हाट्सएप शो का टॉपिक बी स्किल्ड और स्किल्ड होने के लिए क्या कुछ जरूरी है और किन चीजों पर आपको गौर खास करना है। बात हो रही है शो व्हाट्सएप में 8899904904 है नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। और इस फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स के साथ से रिएक्ट दरकाते रहो।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।
1: आरजे ज़ूस

Chinar Beats with Harsh Diva on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा होगा तब।
1: असरा आ गई तो
0: करो हंगामा आजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

कश्मीर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत एहसास है, एक ख्वाब है जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। ये एक ऐसी सरजमीन है जहां की हवाएं भी नगमे गाती है, बहते दरिया भी शायरी सुनाते हैं और हर एक मौसम एक नई तस्वीर तख्लीक करता है। ये है कश्मीर, ये है जन्नत बेनजीर। कश्मीर की रूह को समझना हो तो यहाँ की शायरी को महसूस करना होगा। यहाँ की शायरी में इबादत का एहसास है, मोहब्बत का जज्बा है और जिंदगी जीने का सलीका है। यहाँ की आवाज शायरों के कलम से हर पल फजाओं में गूंजती रहती है। यहाँ की शायरी सिर्फ सुनाई नहीं देती है, महसूस होती है, दिल में उतरती है और एक इंसान को खुद से मिलाती है। अगर शायरी कश्मीर की जान है तो मौसीकी इसकी धड़कन है। कितने ही दिल है जो संतूर की आवाज पे धड़कते हैं, जो रबाब की आवाज सुनते ही झूमने लगते हैं और जो गुलकारों की खूबसूरत आवाज में एक पुरसुकून एहसास महसूस करते हैं। कश्मीर के हर सुर में एक कहानी है, कहानी है बदलते मौसमों की, कहानी है मोहब्बत की, कहानी है आने वाले कल की उम्मीद की। यह है कश्मीर और ये सब एहसास जिंदा है यहां की मौसीकी से। कश्मीर का फन और फनकारी सब्र, महारत और बेपना मोहब्बत की अलामत है और ये एक ऐसा एहसास है जो रहती दुनिया तक जिंदा ओ जावेद रहेगा। पश्मीना शालों की बारीकी से लेकर पेपर माशी की नक्शो निगारी तक हर तखलीक एक नई कहानी सुनाती है। मेहनत से तराशी गई लकड़ी और फितरत से मुतासिर मुसव्वरी, ये सिर्फ फनपारे नहीं है बल्कि एक कश्मीर की लाजवाल सकाफत और विरासत की अक्कासी करती है। कश्मीर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जीती जागती तखलीक है। अगर सही मानों में खुद को कश्मीर के रंग में रंगना होगा तो यहाँ की शायरी, मौसीकी और फनपारों को देखिए तो आपको यकीनन महसूस होगा कि कश्मीर सतरंगा है।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM। रेडियो चुनार।

हकीकत ही है कि हम ईद मनाने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आएगा कल, और आई विश यू ऑल हैप्पी ईद और बहुत सारी चीज़ें, बट बी केयरफुल क्योंकि जब नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी रश भी काफ़ी ज़्यादा, लोग घर आ रहे हैं यहाँ से, वो बाहर घर जा रहे हैं, यानी कि जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, सो बी केयरफुल, बी कॉशियस एंड ड्राइविंग, SUVs को फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्लान बनाए और इन्जॉय कीजिए अपने इस ट्रैवल को, अपने डेस्टिनेशन को, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपने 8 8 9 0 4 9 0 4 पर कॉल

ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा।

0: आजा प्यार की होड़ी ले।
1: दिल बोले तो
2: हार्ट हार्ट
3: हवा यार सौदा सौदा
1: ओहो
0: दोनों डील कर
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक। Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM। The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Jeet.
1: Diva.
2: Assalam alaikum, assalam. Eid ka hai yaro ye paya.
3: Eid, apnon se gale milne ka din.
2: Hey, assalam alaikum, assalam.
0: Eid, bachchon ki khushiyon ka din. अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
3: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
2: मुबारक ईद मुबारक।
3: टीम रेडियो चुनार
0: की तरफ से आप सभी को
3: ईद मुबारक।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Çınar Beats ve Darce Diva, only on Radio Çınar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
1: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
4: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे,
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 एफएम।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया।
3: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम,
0: ईद बच्चों की खुशियों का दिन।
2: ये ईद का त्योहार,
0: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
3: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया।
3: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम,
4: ईद बच्चों की खुशियों का दिन।
2: ये ईद का त्योहार,
4: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
3: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
1: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर, और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है।

0: और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है

0: हवाओं में हर दिल की धड़कन
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया।
0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम,
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन।
2: ये पया, ये ईद का त्योहार।
1: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
3: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
2: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिडार 90.4 FM हर दिल।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल

0: होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया।
3: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम,
0: ईद बच्चों की खुशियों का दिन।
2: ये पया, ये ईद का त्योहार।
0: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
3: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
4: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
5: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन। ईद सबसे

0: शादी समेटने का दिन।
1: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
2: टीम रेडियो चुनार
3: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।
3: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया।
3: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम,
4: ईद बच्चों की खुशियों का दिन।
2: ये ईद का त्योहार,
4: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
3: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
5: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कर्म।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।

0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे म।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा, फिर उसका पल्लू बनके उसका दांत, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और समार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा, छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: दे।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।